सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज शुक्रवार है। शक सम्मत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। विलियम शेक्सपियर का कथन है, सावधानी और सोच समझकर किया हुआ काम डर से छुटकारा दिलाता है। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वरों में आरसी प्रसाद सिंह का लिखा ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे मातृवंदना और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत। स्वर है पंडित भीमसेन जोशी का।

ये भजन आपने सुना किशोरी हमोनकर की आवाज़ में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं रजा बुरहानपुरी की लिखी ये भक्ति रचना, स्वर जानी बाबू का।

0: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:30 हुए हैं, अब सुनिए चिंतन। आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का है और वाचक हैं शैलेंद्र जोगी।
1: हमेशा इस बात पर सावधान रहें कि कोई भी समय निरर्थक व्यतीत न हो। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य, प्रमाद करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में यदि दिल लगता है, समय लगता है, तो ये बड़े दुख की बात है। इसका परिणाम भयंकर होगा। ये समय आपको अच्छे कार्यों के लिए मिला है, इसलिए सावधान रहें कि आपका एक एक क्षण उत्तम कामों में लगे। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को बड़ी सावधानी से खर्च करें। यदि समय के प्रति जागरूकता आ जाए तो जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होगा। समय धन जैसी पूंजी नहीं है कि इसे जब चाहें खर्च कर दें। ये तो अपने आप खर्च हो रहा है। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर एक पल भी जी नहीं सकते। समय ही आपके जीवन का आधार है। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय परोपकार के लिए मिला है, जो समय भगवान के चिंतन के लिए मिला है, जो समय अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए मिला है, अच्छे आविष्कार के लिए मिला है, उसे यूं ही गंवा देना कितनी बड़ी भूल है। इसे पैमाने में नाप कर नहीं बताया जा सकता। समय सोना है, आपको इसका मूल्य समझना ही होगा। नहीं तो मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर भला कहां रह जाएगा। परमार्थ के लिए जीना ही समय का सच्चा सदुपयोग है। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्य के सिवाय किसी और में नहीं है। इस योग्यता का इस्तेमाल ही समय का सच्चा सदुपयोग है। हमेशा सावधान रहें कि कहीं आपके समय का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया उसे ही आत्मिक सुख मिला है।
0: आपने सुना चिंतन। आलेख श्री वासुदेव शास्त्री का था और वाचक थे शैलेंद्र जोगी।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड। आज की कड़ी में स्वर हैं उत्तरा केलकर और ए हरिहरन के।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर थे उत्तरा केलकर और ए हरिहरन के। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि सामयिकी, जिसमें आज किसान श्रोताओं के लिए है सामयिक सलाह।
1: किसान भैया हरो, जोन फसल अपने घरे आ गई है तो ओको सुरक्षित भंडारण अगर अपन कर लेते हैं तो जा समझो कि अपनी मेहनत पूरी सफल हो गई। अब भैया आपके जवाब जान के बड़ो आश्चर्य हुआ है कि अपने इतने जितनों भी उत्पादन होते हैं ओको 10% कीट चूहा चीटियां और फपून से बर्बाद हो जाते हैं। और जो नुकसान खेत से शुरू होके खलिहान भंडारण गृह और पूरे साल भर अपने उत्पादन के प्रभावित करत रहे थे, अपन के जो ध्यान रखना है कि अनाज की सुरक्षा उत्पादन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे के उत्पादन कर ले वो महत्वपूर्ण नहीं है भैया, अगर उत्पादन आपके मिल भी गए और उसे सुरक्षित नहीं कर पाए तो वो आपको उत्पादन प्रभावित होगा। जोन अनाज अपन भंडारण कर रहे हैं या भंडारे थे ओके मुख्य रूप से दो प्रमुख शत्रु होते हैं। पहली तो बात जा के जितनी नमी वो अनाज में भाव चाहिए उसे अगर ज़्यादा नमी है तो जो आपके लाने नुकसान दे है। इसे क्या करें भैया कि जोन अनाज अपन के भंडारित करने हैं ओके अच्छे से सुखा लेवे और एक बार काम अपन उतने जहाँ अनाज सूख रहो है उतने कर सकते हैं कि एक दाना अपन मुँह में रखें दबावें और जब कट की अच्छे से आवाज़ आए तो समझो कि जो अनाज सूख गए है वो भंडारण के हिसाब से सही है। और ये स्थिति के बाद जहाँ अपन भंडारण कर रहे हैं जो उन कोठियों में और कुठलों में तो उन्हें अच्छी तरह से पहले साफ कर लेवें, उनमें जितनी भी दरारें हैं उन्हें अच्छे से बंद कर लेवें और इन दरारों में कीटनाशक घोल बना के अपन अच्छे से छिड़काव कर देवें। अगर अपन बोरों में भंडारण कर रहे हैं तो एक घोल में अपन बोरा सोई उपचारित कर सकत है। जब अपन बोरों में भंडारण करें तो जरूर ध्यान रखें कि वे बोरा जमीन से 6 इंच ऊपर उठे हुए हैं भैया, तो एक लाने अपन या तो पटिया बिछा लेवें, ईंटों पे पहले पटिया रखें उसके बाद अपन उन बोरों के उतह पे रखें। कैसे के अगर अपन सीधे बोरों के जमीन के संपर्क में रखा थे तो बोरों में नमी या शीत आ सकते हैं, तो पटियों पे इन भंडारित अनाज की छल्लियाँ लगाएं और कुठलों में अनाज भरवे के बाद अपन प्रधुमन करें। प्रधुमन के बाद जितने जल्दी होए इन कुठलों के ऐसो बंद कर देवे कि इनसे जो अपन ने वो प्रधुमन करो है वो बाहर न निकल पाए। और यदि अपन बीजों को भंडारण कर रहे हैं तो इनमें कीटनाशक पाउडर बिल्कुल न मिलाएं। इसे कहा है कि इनके अंकुरण क्षमता पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। बोरियों में भंडारण में छलियां लगाते समय 2 लाटों के बीच कम से कम 1 हाथ चौड़ो निरीक्षण पथ जरूर रखें, जिमें आप समय समय पे आ जाके देखत रहें कि बोरियों में जो अनाज है ऊपर कछु रोग व्याधि तो नहीं लग रही है। समय समय पे अपन कीटनाशकों को अगर छिड़काव करवो चाहते हैं तो ऐसो करवे में भी आसानी होते है। अगर अपन भंडारण की आधुनिक विधि अपना रहे हैं तो उन्हें भी अपना के अपन संभावित नुकसान से बहुत कछु बच सकते हैं। और हम तो जा कहें कि जो आधुनिक विधि हैं उनमें नुकसान बहुत कम होते हैं और जो भैया हरे सक्षम है वे इन विधियों को उपयोग सोई कर सकते हैं। भंडारण के बाद किसान भैया हरे एक महत्वपूर्ण काम जरूर कर सकते हैं कि खरीफ फसलों की खेती की एक योजना बना लेवें कि अपन के कौन से खेत में कौन सी फसल बोने हैं, कितनी मात्रा में बोने हैं और कबे बोने हैं। ये पूरी योजना बनावे के बाद अगर अपन बुआई को काम करत है तो अपने पास का है कि आवश्यक संसाधन जैसे बीज कीटनाशक उपकरण ये सब पहले से उपलब्ध रहते हैं तो अपनों काम बहुत कम समय में जल्दी हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अगर अपन कोई योजना नहीं बना रहे हैं और सीधे के भैया चलो अब बुआई करने हैं तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपके जो जरूरी चीजें हैं या जरूरी सामान है वो मौके पे नहीं मिले तो कई बार आपको काम पिछड़ सकते हैं। तो जब भी अपन तैयारी करें तो खेत को चयन कर लेवें, बीज को चयन कर लेवें, आवश्यक उपकरणों को चयन कर लेवें और इनकी सब जब पूर्ति हो जाए ओके बाद अपन बुआई करें तो समय पे बुआई होते है और ओको परिणाम सोई अपन के अच्छो मिलत है। किसान भैया अगर कोई आप दूसरी जींस लेवे वाले हो तो ओके लाने आपके एक काम जरूर

0: बचत हुए, पैसा बचे और अपन के उत्पादन अच्छे मिले।
1: कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे सामयिक सलाह। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आइए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। अभी 7:20 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रस्तार में सुनिएगा रेवाराम विश्वकर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

9:15 पर गांधी चर्चा हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे और 9:30 से फिर सुनिएगा फिल्म संगीत। वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:05 पर। 10:10 से समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले 10:20 से आप आनंद उठाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा में। दूसरी सभा में शाम 5:02 पर युभवाणी, ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 5:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 हमारे केंद्र से आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

रेखा अग्रवाल के गाए बुंदेली लोकगीत सुने जा सकते हैं शाम 6:30 पर, शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी निकिता काढ़े। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इस कार्यक्रम में घास का उन्मूलन कैसे किया जाए ये बताएंगे डॉक्टर पी के सिंह। रात 8:00 सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर मन भावन। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। छह बजकर 55 मिनट होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में ढसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रुपए की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉ. निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनीता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली एआई ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:20

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। दोस्तों, ये कारवां है आकाशवाणी, एक महान संस्था जो अपने गौरवशाली 90 सालों के सफ़र को पूरा कर चुकी है। और इस सफ़र के दौरान ना जाने कितने प्रसारक, कलाकार, साहित्यकार और श्रोता इसके साथ जुड़ते रहे हैं। संख्या बल के लिहाज से ये कारवां भले ही अब थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन अगर प्रसारण के क्षेत्र की बात की जाए वो कहीं ज़्यादा व्यापक हुआ है। और अब क्षेत्र की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति तक हमारी पहुंच हो चुकी है, क्योंकि AIR ऐप के माध्यम से हर मोबाइल तक आकाशवाणी का प्रसारण पहुंच रहा है, विविध भारती का प्रसारण पहुंच रहा है। कहीं भी कभी भी आप सुन सकते हैं। और इस महान अवसर पर लोगों में हमारी इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आज जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं देश के, सभी में एक साथ मैराथन दौड़ों का आयोजन किया जा रहा है। नाम भले अलग अलग हैं, आकाशवाणी जबलपुर भी इसमें पीछे नहीं है। इसे नाम दिया गया है आकाशवाणी मैराथन 2026। बस कुछ ही देर से ये दौड़ आरंभ होगी जो यहाँ से गोरखपुर तक जाएगी। और ये अहम नहीं है कि हम कितना दौड़ेंगे, सबसे अहम यह है कि हमने जो गौरवशाली सफ़र तय किया है 90 सालों का, वो कितना महान है। और समय के साथ तब्दीलियां भी आई हैं। कभी शिक्षा, सूचना, मनोरंजन की जो त्रिवेणी थी, इसमें मनोरंजन के तत्व कम हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ अब मनोरंजन का प्रतिशत कहीं ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा, सूचना भी पीछे नहीं है, वो भी साथ साथ चल रहे हैं।

दोस्तों, आज 8 मई है तो कुछ याद आया। आज न जाने कितने लोगों के जन्मदिन होंगे, कितने लोगों की शादी की वर्षगांठ होगी, लेकिन आज एक महान संस्था को याद करने का भी दिन है। एक ऐसी संस्था जो मानवता के लिए समर्पित है और उसका नाम है रेड क्रॉस। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व रेड क्रॉस संगठन के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वे मानवतावादी सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी थे। उन्होंने 1859 में इटली के सेलफेरिनो का युद्ध देखा, जिसमें बड़ी तादाद में सैनिक हताहत हुए। उनकी सहायता करने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं था। इससे हेनरी ड्यूनेंट का मन बहुत विचलित हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाकर उन सैनिकों तक खाना और पानी पहुंचाया और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। सेवा के इस कार्य को संगठित रूप देने के लिए हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस संगठन की स्थापना की। 1864 में पहले जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने सशस्त्र संघर्ष के दौरान घायल सैनिकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया। तब से रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी 190 से अधिक देशों में दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन बन गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पहली बार 1948 में पहली जिनेवा कन्वेंशन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था।

दोस्तों, लड़ाई या युद्ध में चाहे कोई भी जीते, हमेशा मानवता की हार होती है। बारूद के ढेर पर खड़ी इस दुनिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही सबसे मान्य सिद्धांत और विचारधारा हो सकती है। और विचारधाराओं में चाहे जितने भी अंतर्विरोध और टकराव क्यों ना हो, उन सब का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है। एक सभ्य समाज में घृणा, आतंक और हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, और दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा और आतंक की वकालत नहीं करता। उसके बावजूद धर्म और मजहब के नाम पर आतंक भी फैलाया जाता है और हिंसा भी होती है। बात विश्व राजनीति की जाए तो घोषित तौर पर सभी देश किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा और भर्त्सना करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इनमें से बहुत सारे देश आतंकवाद की आधारशिला पर ही खड़े हैं। वे आतंकवाद के सबसे बड़े पोषक हैं और आतंकवादियों को खाद पानी उपलब्ध कराते हैं। उनकी मजहबी और विस्तारवादी नीतियां शांति की राह की सबसे बड़ी बाधा और चुनौती हैं। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हकीकत है कि हर आतंकवादी किसी न किसी धर्म या मजहब का मानने वाला ज़रूर होता है। वो भले ही खुद को पक्का मजहबी समझे, पर सच्चाई ये है कि वो अपने धर्म या मजहब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।

दोस्तों, कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है ज़िंदगी। और ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि चारों तरफ काली घटाएं छाई हैं, अंधेरा इतना ज़्यादा है कि रोशनी नज़र नहीं आती है। और ऐसी परिस्थितियों में आम तौर पर व्यक्ति निराश हो जाता है और चलना छोड़ देता है या थक कर बैठ जाता है। लेकिन ये ना भूलें कि जहाँ पर हमें रास्ता ख़त्म नज़र आता है, वहीं से एक छोटी सी पगडंडी हमें मंजिल तक पहुँचाती है और निराशा की अंधी सुरंग में आशा की एक किरण हमें रास्ता दिखाती है। और उस रास्ते को पकड़कर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये अहम नहीं होता कि हमने क्या उपलब्धि हासिल की, अहम ये बात होती है कि हमने कोशिश कितनी की। और अगर हमारी कोशिश ईमानदारी भरी है, तो फिर मंजिल यकीनन दूर नहीं रह जाती है।

दुनिया की सबसे चंचल और चपल शय अगर कोई है तो वो है मन, जो भी समय से भी तेज भागता है। और यही मन कई बार हमें उम्मीदों में

दोस्तों, जिंदगी की सबसे बेवफा शय अगर कोई है तो वो है वक्त, जो कभी रुकता नहीं। कोई साथ हो तब भी और ना हो तब भी, देखा जाए तो समय की रवानी में ही जिंदगानी है। अनवरत बहती एक नदी जिसका पानी किसी के लिए विष है तो किसी के लिए अमृत, ये वक्त वक्त की बात है। समय के गुजरने की यही तासीर किसी के लिए खुशी का बायस बनती है तो किसी के लिए गम का सबब। कोई अच्छे वक्त को पकड़ना चाहता है तो कोई बुरे समय के शिकंजे से छूटना। यानी समय चाहे अच्छा हो या बुरा, आखिरकार गुजरता जरूर है और पीछे छोड़ जाता है यादों का सैलाब, जो कभी मीठी होती हैं तो कभी बेहद कड़वी। दोस्तों, समय का निकटवर्ती प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो है मन।

दोस्तों, मन का जो चिर प्रतिद्वंदी है समय, वो इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम का समय पूरा हुआ। तो अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त चमन सालवार को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत

0: करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में

0: महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी

0: दी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends U.S. military access to its bases and airspace.

हिना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, नक्श लायलपुरी के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगले गाने से पहले एक सूचना दोस्तों, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम प्रति शुक्रवार को रात 9:30 से 10 के बीच प्राइमरी चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है आज अपराह्न 4 तक। पहला गीत यादों का मौसम फिल्म से, जब उसका चेहरा महकेगा, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़। इश्क फिल्म का गाना नींद चुराई मेरी, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ में। हीरो फिल्म का नगमा डिंग डोंग, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़। कुली नंबर 1 का गाना जब दिल ना लगे दिलदार, और भाग मिल्खा भाग फिल्म का शीर्षक गीत श्रेया घोषाल और जावेद का गाया हुआ। मोबाइल नंबर है 9425149342, 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 4 तक मिल जाना चाहिए।

की आवाजों में परदेश फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत नदीम श्रवण का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। एक सूचना आपको दे दें, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम प्रति शुक्रवार को रात 9:30 से रात 10 तक प्राइमरी चैनल पर प्रसारित होता है। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है आज अपराह्न 4 तक। जब उसका चेहरा महकेगा, यादों का मौसम फिल्म का नगमा अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ में, नींद चुराई मेरी कुमार सानू उदित नारायण की आवाज़ें, इश्क फिल्म का यह गाना अनुराधा पौडवाल और महना रोहतास की आवाज़ों में, हीरो फिल्म का गाना डिंग डोंग और कुली नंबर 1 का गाना जब दिल ना लगे दिलदार कुमार सानू की आवाज़ में, भाग मिल्खा भाग फिल्म का शीर्षक गीत श्रेया घोषाल और जावेद की आवाज़ में। मोबाइल नंबर है 9425149342 9425149342। ये संदेश हमें अपराह्न 4 तक मिल जाना चाहिए। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब वक्त हो रहा है इस घंटे की खास खबरों का। हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। वियतनाम के राष्ट्रपति तु लाम ने कल मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। डॉक्टर यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम व्यू पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में लीजिए सुनिए रेवाराम विश्वकर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

0: आज के लोक रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रेवाराम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:15 होने को है। गांधी चर्चा कुछ ही पलों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: गांधी चर्चा।

मेरा विचार है कि भारत के प्रत्येक सत्याग्रही में ये योग्यताएं होनी चाहिए। उसे ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही तो उसका एकमात्र अवलंब है। उसे सत्य और अहिंसा को अपना धर्म मानते हुए उनमें विश्वास रखना चाहिए, और इसी कारण उसे मानव प्रकृति की अंतर्निहित अच्छाई में भी आस्था होनी चाहिए।

से आशा रखनी चाहिए कि वो इसी अच्छाई को अपने पीड़ा भोग के जरिए सत्य तथा प्रेम की अभिव्यक्ति करके जगाने में कामयाब होगा। उसे पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अपने जीवन और अपनी संपत्ति को न्यौछावर करने के लिए तैयार तथा इच्छुक रहना चाहिए। वो आदतन खादी धारण करने वाला तथा चरखा कातने वाला होना चाहिए। भारत के संदर्भ में ये आवश्यक है। वह मद्य त्यागी और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त होना चाहिए ताकि उसका विवेक सदा जागृत रहे और चित्त स्थिर रहे। वो समय समय पर निर्धारित अनुशासन के नियमों का स्वेच्छा से पालन करे। उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिए सिवा उन नियमों के जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हों। ये नियमावली केवल दृष्टांतिक है। सत्याग्रही शैतान की पीठ पर सवार होकर तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। सत्याग्रह में कपट, मिथ्यात्व या किसी प्रकार के असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही सम्मानजनक शर्तों पर समझौता करने का कोई अवसर नहीं खो सकता, लेकिन समझौता वार्ता असफल हो जाने पर उसे संघर्ष के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। उसे पहले से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसकी कार्रवाई में किसी तरह की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। लोग प्रायः ये भूल जाते हैं कि सत्याग्रही का उद्देश्य अन्यायी को लज्जित करना कभी नहीं हो सकता। उसकी अभ्यर्थना अन्यायी के भय से नहीं, सदैव उसके हृदय से होती है और होनी चाहिए। सत्याग्रही का उद्देश्य अन्यायी पर जोर जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। उसे अपने समस्त व्यवहार में बनावटीपन से बचना चाहिए। वो सहज रूप से तथा अपने आंतरिक दृढ़ विश्वास के बल पर काम करता है। सत्याग्रह मूलतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति का हथियार है। सत्याग्रही अहिंसा से प्रतिबद्ध होता है और जब तक लोग मनसा वाचा कर्मणा इसका पालन न करें, मैं सत्याग्रह नहीं कर सकता। मेरी सदा ये धारणा रही है कि अपनी गलतियों को उत्तल लेंस से और दूसरों की गलतियों को अवतल लेंस से देखने पर ही दोनों की न्यायोचित तुलना की जा सकती है। मेरा विश्वास है कि जो सत्याग्रही बनना चाहता है उसके लिए ध्यानपूर्वक और ईमानदारी के साथ इस नियम का पालन करना आवश्यक है। सत्याग्रही पशुबल की यंत्रणा से बचाव के लिए भगवान पर भरोसा रखता है। कोई पक्का सत्याग्रही अपने विरोधी की ओर से आने वाले अपेक्षित या अनपेक्षित खतरों से घबराता नहीं है। हाँ, हर सेना की तरह उसे भी अपने भीतर के खतरे से भय खाना चाहिए। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग और अब प्रस्तुत है भजन।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं देवर का लिखा ये नगमा, जिसे गाया है कंचन मनहर आनंद कुमार और साथियों ने। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं।

जाने मन फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। अगला गाना हम तुम पे मरते हैं फिल्म से, गीत आनंद बख्शी का, संगीत उत्तम सिंह का। इस गाने को गाया है शोभा जोशी और उदित नारायण ने।

0: प्यासा फिल्म का ये नगमा आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10 बजने को है, जिले की चिट्ठी अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: संगीत के साथ ही फिल्म

0: है।
1: लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को

आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई, जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण। इस समय हमारी
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

नमन मातृभूमि को, जिसने हमें भारतीय होने के सम्मान से नवाजा और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव से विभूषित हमारा देश मानवीय मूल्यों और सर्वधर्म समभाव की मजबूत परंपराओं का वाहक है। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम, जिसका अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरवगान की 150वीं सदी। ये आकाशवाणी जबलपुर है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमेरिकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नामित किया। समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमेरिकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तीनों अमेरिकी जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल आए। अमेरिकी सेना ने इन जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को नष्ट कर दिया और ईरानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर हाल में अपनी सेना की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने टकराव की शुरुआत की और ईरानी सेना ने केवल इसका जवाब दिया। अमेरिका और इसके अरब सहयोगियों के बीच तनाव के बाद ये हमला हुआ है। है कि सऊदी अरब ने जबरन जल डमरू मध्य मार्ग खुलवाने के अमेरिकी प्रयास में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: उधर सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों

0: निगरानी रखने की अपनी योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए कोई स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्क लगाए जाने की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1-2 मत से इस टैरिफ को अवैध बताया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और फरवरी में अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रगति का भी जायजा लिया गया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में संविधान परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर शर्मा न्याय परिषद द्वारा भेजे गए 6 उम्मीदवारों में वरिष्ठता क्रम में 4th स्थान पर हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने की। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: नेपाल में पहले आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार वरिष्ठता क्रम को छोड़कर डॉक्टर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेपाल के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुका हो वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इस पद के लिए योग्य न्यायाधीशों में सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर नाहकुल सुबेदी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ शामिल थे। न्यायिक परिषद द्वारा अनुशंसित सभी 6 व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और संविधान किसी की भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु सीमा 65 वर्ष है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं पायल शर्मा।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में आज से 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा की है। ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई के विजय दिवस परेड के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर संभावित ड्रोन हमलों के डर से युद्ध रोक सकता है। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लैम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक रिपोर्ट।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश

0: सहयोग को बढ़ाना है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले 15 वर्षों में किसी वियतनामी राष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे पहले राष्ट्रपति तो लाम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। श्री लाम ने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 6 बच्चों की मौत ढाका में और शेष की बारिसाल, खुलना, मेमन सिंह, राजशाही और सिलहट में हुई। महानिदेशालय ने बताया कि इनमें से एक बच्चे में खसरे की पुष्टि हुई जबकि 11 बच्चों में खसरे जैसे लक्षण पाए गए। देश भर में 1238 बच्चों में खसरा जैसे संक्रमण के लक्षण हैं। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये संक्रमण क्रूज जहाज MV होंडियस से जुड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार करें अपने दोस्त चमन सालवार का नमस्कार। हमारा फिल्म संगीत और खासकर हिंदी फिल्म संगीत की अगर बात की जाए, इतना समृद्ध है कि जिसके बारे में कुछ कहना सूरत को चराग दिखाने वाली बात होगी। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई पहलू नहीं है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है और ऐसा कोई जज्बा नहीं है जिसको अभिव्यक्त करने वाले गाने ना मौजूद हों। कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, या कुछ संकोच होता है तो कह नहीं पाते हैं, लेकिन गाने ऐसे हैं जो आपके मन की बात सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो आप सारे श्रोताओं से मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन रफ़ी साहब पहले ही कह चुके हैं, आप ही सुन लें।

तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत साहिर लुधियानवी का था और संगीत ओपी नैयर का। वास्तव में वो लोग कितने किस्मत वाले होंगे जिन्होंने रफ़ी साहब को गाते हुए देखा और सुना होगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस गाने को पसंद किया आप सब ने प्रेमलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। बंडाबेली जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, हल्ले, विनीता लल्लू, ऋषि रैकवार, वैशाली और वैष्णवी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, रास्तीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अगला गाना भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है लाट साहब, गीत हसरत जयपुरी का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप सब हैं। धाड़ी नांदुरा से संदीप बाठे, श्री कृष्ण बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इलमा खान, असलम सैफी। मीरा सराय बदायूं से ये चिट्ठी है आफरीन खान, जमीर खान और उनके परिवारजनों की। पोफाली यमतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। हनुमान वार्ड करेली से गिरधारी लाल चढ़ार, शैलेंद्र सिंह चढ़ार, सुयश, प्रियांश, अथर्व, अंश, तन्मय, सेलू और बबलू चढ़ार। सर्री केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवारजन। मंडला पिंडरी से सुमत कुमार जैन, राधेश्याम केवट, प्रदीप पटेल, कृपाल पटेल, वरुण जैन और कबीर जैन।

रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी और ऋषभ अंशलक्ष्मी, बिरसिंहपुर पाली उमरिया से संतोष कुमार राव, भारतीय राव, बेलाबाई विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूडत, रामलोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रौनिका यादव, अस्पताल रोड सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी और तन्वी गौहर, जबलपुर कैंट से लखन राही, लक्ष्मी राही, अंकिता राही, सृष्टि राही और उनके परिवारजन, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस, कनिका और मन पटेल, बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। और ये चिट्ठी छत्तीसगढ़ लक्षनपुर की है, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और सरोजनी कुंती साहू की। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, गीत एस एच बिहारी का, संगीत ओ पी नैयर का, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

और अब एक बड़ी धीमी बहर का गाना, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान और अबान अब्बासी। कस्बा गन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवंगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवंगन। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार, कामले, राखी कामले, रेखा, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परु। और ये चिट्ठी छत्तीसगढ़ बेमेतरा से है, पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। कड़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। और प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार, जयश्री, राजेश कुमार और अंजलि। कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े। गीत अमित खन्ना का, संगीत बप्पी लहरी का, दिल से मिले दिल फिल्म का नाम।

सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, क्रिश्चियन कॉलोनी सागर से डैनी मार्टिन, अर्चना मार्टिन, अश्मिका, अंशिका और विमला मार्टिन।

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, आलोक कुमार खरे, अरुण कुमार खरे, अनिल कुमार खरे, आप सब हैं मंसूर नगर शाहबाद से और उनके परिवारजन भी हैं। पुणे से पंकज बाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाडोदे, चंद्र प्रभा बाडोदे और उनके परिवारजन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव शाइना और निमान शर्मा। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। दरचोरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू। मगरलोड से पूनू राम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू। उमरखेड़ मेहरनगर से अभिजीत गमाड़कर, सरिता गमाड़कर, प्रिंस एकांश। बहादुरा नागपुर से वैशाली, श्वेता सुमित, कुमारी धोनी गमाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और टुक टुक गवाड़कर। ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, फिल्म का नाम है राम और श्याम।

सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा पोतरा, मुस्ताबा खान, पोतरी आफिया खान, राउफ और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, छत्तीसगढ़ बेमेतारा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र और ब्रजकांत सारथी। आप सबकी पसंद पर अगला गीत और आखिरी गाना आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है संघर्ष।

दोस्त इस गाने के साथ ही कार्यक्रम सारंगा से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास साझेदारी वैश्विक कार्यबल आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वैकोथॉन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई, कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में सम्पन्न हुई। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेब डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो
3: जी, आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
2: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम?
3: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
2: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मथुरा उत्तर प्रदेश।
2: मथुरा उत्तर प्रदेश। हाँ शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
3: जी दीदी, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है। तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
2: क्या बात है, मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
3: जी दीदी, पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, जिसके कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया।
2: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई वहाँ विजिट करना चाहे तो अभी आराम से आ सकता है।
3: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है। और जो देवालय है यहाँ पे शिवालय है, अनेकों लीला स्थली क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
2: बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी।

0: अच्छा अभी बताइए, आज का प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर,
0: शोर।
1: अरविंद कपूर साहब की आवाज में। जीवन
0: हाँ
1: चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये प्यारा सा पूरा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक है।
0: अच्छा, जीवन चलने का नाम।
1: जी
0: देखते हैं हम ये गीत, हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक बार
1: बिल्कुल
0: मैं
1: बिल्कुल,
0: चेक कर
1: ये
0: लेती
1: गाना है
0: हूँ।
1: आपके पास। जी
0: क्यों नहीं दिख रहा ये भाई?
1: 101% से, और
0: हाँ हाँ होगा वो
1: जी
0: तो। और सुनाइए शारदा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: दीदी, मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, एक
0: अरे
1: नाती
0: वाह,
1: है, एक नतनी है,
0: अच्छा।
1: और हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं
0: हाँ,
1: आनंद पूर्वक, और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं रेडियो
0: अरे
1: पर, हमारे
0: वाह,
1: सब
0: मतलब
1: परिवार
0: आपके
1: के ही।
0: घर के सभी लोग हैं ना, गीत संगीत से
1: जी
0: जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी निसंदेह।
0: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नजरों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल
1: जी,
0: 11 बजे अपना।
1: मैं
0: हाँ
1: करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चालू हुआ है तब
0: हाँ
1: से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और जब से रिकॉर्डिंग हो गया है तो मैं
0: अच्छा
1: 8 दिन 10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और मेरा
0: हाँ जी,
1: फोन आराम से लग जाता है।
0: चलिए धन्यवाद शारदा जी, और बस एक विनती करेंगे कि एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: हाँ दीदी, मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता हूँ,
0: चलिए
1: इससे
0: ठीक
1: पहले
0: है,
1: मैं नहीं करता हूँ। मेरा
0: बिल्कुल
1: फोन
0: बिल्कुल।
1: 28 तारीख को लगा था और 28 के बाद आज लगा रहा हूँ।
0: ओके, धन्यवाद शारदा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो हेलो
1: कार?
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी।
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: सही है।
0: बड़ा
1: सही
0: संयोग है ये तो।
1: बात है मैडम।
0: हाँ जी, बस वो कन्हैयालाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैयालाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद जी थे प्रजापति और मथुरा
1: अच्छा,
0: से, और ये
1: हाँ
0: मथुरा से कन्हैयालाल जी आ गए हैं उज्जैन से। क्या बात
1: हाँ
0: है।
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है। हाँ,
0: बहुत ही बढ़िया संयोग
1: मथुरा से उज्जैन आ गए, गोकुल
0: वही।
1: गोकुल करने गए हैं ना,
0: बिल्कुल
1: पढ़ने के लिए आ गए हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: आनंदपुर
0: बात
1: से।
0: है। हाँ तो चलिए कन्हैयालाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर, तो अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके।
0: सही बात है, गर्मी तो है। दो
1: ठंडा
0: तीन दिन से
1: वंडा हो गया
0: थोड़ी सी
1: कुछ।
0: राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की
1: हाँ
0: वजह से।
1: हाँ भोजन वजन करके आए और हरदेव लाला आराम
0: हाँ
1: कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैयालाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप।
1: वो फिल्म जीने की राह सुना दीजिए।

0: बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
1: जीने की राह तो मिल गया है,
0: मेरी महबूबा ये
1: वाला। लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है, बिल्कुल ठीक है, मिल गया आपकी पसंद का गीत भी मिल गया, है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
0: और आपके इधर किसने क्या गर्मी है अभी इंदौर?
1: हमारे यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी तो 2 दिन से कुछ राहत कह सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा रात में से सुन लिया।
1: जी जी चलिए, धन्यवाद कन्हैया लाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है।
0: ओके ओके धन्यवाद
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी, हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी जी
1: है।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और
1: जी
0: कॉल
1: थैंक
0: कितने
1: यू सो
0: दिनों बाद
1: मच।
0: कर रहे हैं आप?
1: जी समझ में नहीं आया
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी, 10 दिन बाद लगा है आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारा
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और
0: हाँ
1: 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी आपको बताऊँ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो रहता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और
0: चल।
1: उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल पर।
0: हाँ
1: और
0: जी जी
1: एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था, आपके मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी, उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा, मतलब
1: लोग।
0: काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए। हाँ
1: जी हाँ, वो उसमें है ना एक दिन ऐसा भी वो विशेष होता था कि
0: हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था और श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसे मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी।
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां से।
0: अरे
1: जी,
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए, मतलब
1: और
0: अब
1: एक बात और
0: अपना
1: है, जैसे युववाणी प्रोग्राम आता था ना, युववाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस करके,
0: हाँ हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी के जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना, उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैम नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते पहुँचे।
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पंडित शिवनारायण तिवारी, नारायण
0: जी शिव नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं
1: जी,
0: आप?
1: बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे हैं।
0: अच्छा, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल। गर्मी भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
0: और घर में सब
1: और
0: कैसे हैं?
1: आप
0: हाँ,
1: ठीक
0: हम बढ़िया हैं।
1: हैं?
0: तो बताइए, कौन से गीत सुनेंगे?
1: आज सुनाना सड़क फिल्म का
0: सड़क फिल्म का
1: जी,
0: कौन सा वाला गीत?
1: वो जब जब प्यार पे पहरा हुआ,
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा गीत है ये।
1: ये का हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप उबते नहीं हो,
1: जी मैम,
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का जरूर सुनिएगा।
1: जी मैम,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका। नमस्ते। अच्छा,
1: मैम। शिवानी, मैंने बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी,
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा,
0: शिवानी मेहरा।
1: शिवानी मेहरा,
0: कहाँ से? नीमच
1: नीमच
0: से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हो? मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो, क्योंकि
0: ये बात तो सही है। फैमिली में कौन
1: काफी
0: कौन है
1: धूप।
0: शिवानी जी आपके?
1: हाँ,
0: कौन कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर रहती हूँ, खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने कि फोन में प्रोग्राम आ रहा है, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप कल?
1: मैम सागर मूवी का
0: अरे
1: चेहरा
0: वाह।
1: ये चांद खिला है।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम,
0: तो हम आपको ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर
1: जी
0: लेंगे आपका, और आप
1: जी
0: कल के
1: थैंक
0: प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत ज़रूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप।
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो, सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद, बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप बोलते हो ना, तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारे देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं, ऐसा रहता है। पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए। जी
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी
0: चलिए, अभी तो आज के
1: और
0: लिए बताइए
1: जैसे
0: कि कौन
1: कि
0: सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेथ का
0: देखिए,
1: दिन है। जी
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं जो अपने
1: हाँ,
0: फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए, उन्हीं का गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ हाँ
1: वाला सुनवा दीजिए। नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का कौन सा
1: सिंगर
0: वाला?
1: उसका कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुआ गीत है उसमें, झूम बराबर झूम शराबी, ये भी है और दूसरा भी है गीत।
0: नहीं, इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला, पुतली
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया।
0: नहीं, है इसमें पुतली बाई का तो नहीं
1: जी
0: है। पुतली बाई का जो
1: जी
0: गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ,
0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा।

0: जी का नहीं है जी,
1: नहीं
0: तो फिर ये यही सुना दो, लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला।
1: लेडीज टेलर,
0: रफी साहब और लता जी,
1: अच्छा,
0: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत प्यारे।
1: हाँ
0: नाम
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत दो चाहने वालों की।
0: हाँ मुलाकात है वल्ला,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लोकेन वर्मा भी इसे की फरमाइश, इसी की फरमाइश कर रहे हैं।
1: चलिए ठीक है, तो ये गीत आप बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
0: धन्यवाद।
1: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: दीदी, नमस्ते। रणपाल
1: क्या शुभ नाम है आपका?
0: सिंह गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ। दीदी,
1: आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।
0: रणपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: जालौन से गुर्जर है ना?
0: हाँ
1: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं?
0: जी, सुरनपाल से गुर्जर, ग्राम
1: सुरेंद्र
0: बाबूपुरा।
1: पाल जी गुर्जर। ठीक है
0: जी
1: ठीक है। तो सुरेंद्र पाल जी, क्या हाल है आपके?
0: अच्छा है, बढ़िया
1: गर्मी
0: चल
1: कैसी
0: रहा है
1: निकल
0: आपका।
1: रही है
0: हाँ,
1: जालौन में? गर्मी कैसी पड़ रही है?
0: अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
1: चलिए।
0: फुल्की बूंद बांद हो जाती है
1: हाँ,
0: तो अब गर्मी से राहत है इस समय।
1: चलिए। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश
1: अच्छा।
0: की धरती सोना उगले।
1: ठीक है। उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
0: हो गया 2 माह 3 के लगभग,
1: अच्छा, चलिए ठीक है। क्योंकि
0: एक
1: हमारे यहाँ
0: बार।
1: एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
0: नहीं,
1: ठीक
0: दो
1: है,
0: तीन माह हो गए करीब करीब।
1: चलिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी।

0: और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत, ठीक
1: एक
0: है?
1: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
0: है?
1: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते, वो अब वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
0: हाँ,
1: बजे से होती
0: वो
1: है?
0: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
1: अच्छा
0: बात कर रहे हैं ना, ये कल
1: हाँ जी,
0: 11 बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: यही
0: ठीक,
1: जिज्ञासा थी। चले
0: हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच,
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते.
0: हाँ विपिन जी नमस्ते।
1: क्या बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं और आपने उठा लिया, इसलिए
0: नहीं,
1: ध्यान ही
0: घंटी
1: नहीं
0: तो
1: गया
0: यहाँ पर आई है, आपको ऐसा
1: जी.
0: वहाँ पर फील हुआ होगा, यहाँ पर तो घंटी
1: बिल्कुल,
0: बाकायदा आई।
1: लेकिन आप तुरंत पहचान गई मुझे.
0: अब हमारे पुराने श्रोता जितने हैं और इतनी बार बात कर चुके हैं तो आवाज़ से पहचान ही जाते हैं।
1: हाँ, पर
0: और
1: हमारे लिए तो है ना, आप एक लॉटरी की तरह रहती हैं, पता नहीं कौन निकलेगा.
0: तो आपने पहचान लिया कि हम कौन हैं?
1: जब आपने पहचान लिया तो हम भी पहचान ही लेते हैं.
0: कौन है हम?
1: आप हैं कविता रावत और मैं हूँ विपिन कटारे.
0: बिल्कुल। और विपिन
1: है
0: जी
1: ना
0: कैसे हैं?
1: जी, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ. और आज 15-16 दिन हो गए थे तो हमने कहा चलो कॉल करते हैं, आज फोन करेंगी, सुनने की रिकॉर्डिंग हो रही
0: बहुत
1: होगी
0: अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस जगह भूल
1: जी.
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात
0: सागर
1: कर रहा
0: से?
1: हूँ.
0: बिल्कुल ठीक है विपिन जी। और गर्मी कैसी पड़ रही है सागर में? तो गर्मी
1: गर्मी
0: तेज।
1: तो बहुत बहुत हो रही है गर्मी, लेकिन हालांकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उससे थोड़ी
0: हाँ
1: सी कमी तो आई है, लेकिन हाँ फिर भी गर्मी हो रही है अभी भी.
0: ये तो है।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: आपके यहाँ भी गर्मी हो रही होगी.
0: हमारे यहाँ भी गर्मी है, लेकिन वही सेम सीन, 2 दिन पहले बारिश हो
1: हाँ
0: गई है तो थोड़ी सी राहत हुई है।
1: हाँ पहले जो 10 दिन पहले गर्मी थी ना, उससे तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: कम है अभी.
0: वही वही। और सब कुछ परिवार में सब शुभ मंगल?
1: हाँ जी बिल्कुल, सब बढ़िया, अच्छा है. और आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश का प्रसारण सुनते हैं और आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं समय समय पे, तो अच्छा लगता है.
0: अच्छा गीत बताइए अपनी पसंद का।
1: हाँ जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और इसी का गाना सुना देना, मुझे तुम मिल गए हमदम, लता जी की आवाज़ में गीत है.

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास साझेदारी वैश्विक कार्यबल आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर चौधले और आरती चौधले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी ज़िला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातन खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाली यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणी बाग और पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरवाई ज़िला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जद्दी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। साथ ही ये पत्र है दोबीहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनते हैं ये गीत।

अगले गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रोगन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है बनिया भारत धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, यह लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, सुनते हैं ये गीत। ये अंतिम प्रस्तुति आपकी फरमाइश की।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 5 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन और सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याएं और जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं वो 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय फोन नंबर एक बार दोबारा सुन लीजिए, 10 मई 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की नवी कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की नौवीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैंतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी है उनको देखो, और एक मैम और एक वो दोनों है। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक है ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते हैं। और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अरे कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते हैं, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते हैं। और तो और, नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।

0: हरि हम गाम।
1: देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मर्जी है।
1: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं पंडित चंद्रधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहाँ तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं, मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
2: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
1: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं। लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए। बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थक कर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता भाई। ठीक समय पर स्कूल जाता हूँ और देर से घर वापस आता हूँ, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूँ। तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ, अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई। मुंशी जी, मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सह परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी? अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी, गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई, सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी जरा हाथ तो बटाइए।
5: अरे बच्चों बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
0: अजी तुम तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ छूटा जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं, हटिए हटिए।
1: अरे ओ मेरा बिस्तर बन लिए कहाँ जा रहा है, रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट पीछे। देखता नहीं महिला है।
5: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कमबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे
1: हैं? अरे जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, आज में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
0: अरे भगवान तुम बच्चों को लेकर आगे बढ़ो, संदूक लगा देना हो।
6: अरे भैया,
0: अरे हटिए भाई साहब,
6: मैं भी नहीं देता
0: जगह दीजिए। अरे
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो 4 ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
7: हैं? क्यों उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए हैं। बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
7: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
7: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
7: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
7: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
7: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
8: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
8: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
8: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
8: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
7: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजीत ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। हाँ। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो नहीं लगी ना?
1: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे?
2: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
9: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, दिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
10: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
11: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
12: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
10: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
9: अच्छा।
11: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा। अब बच्चों के पास चला जाए।
9: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
11: तुम बैठी रहो, ठीक है। पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
9: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
11: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
9: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
11: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
9: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा। हाँ बच्चों संभल कर।
2: अरे ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
1: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
2: उतरते हैं, चलो भाई।
9: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हबड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े लत्ते पैसे जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी। अब क्या होगा। हे भगवान।
2: अरे अरे अरे
1: अरे,
2: अरे,
1: अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
9: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
2: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
11: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
13: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है? लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है। बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नजदीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
1: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लिटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
2: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा सा हाथ लगा दो भाई। हाँ
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
14: जी हाँ कहिए। यहाँ का मैं कंपाउंड है डॉक्टर, और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
1: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
14: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
1: तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं?

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। हाँ।
1: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
0: जी हाँ, पहचानता हूँ।
1: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
0: ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन?
0: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन।
2: आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
2: 10 रुपये?
0: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज।
3: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
4: क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
5: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
4: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
5: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ

0: तो तुम्ही हो कृपा शंकर। अरे भाई तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
1: जी हाँ, 9 साल था।
0: हाँ।
1: मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
0: अच्छा।
1: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
0: हाँ।
1: कहिए, आप तो अच्छे हैं ना, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
0: भाई मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
1: उनका तो देहांत हो गया, माताजी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
0: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग होंगे?

0: पकने लगीं। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
1: कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा।
2: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमान खेड़ा में शुरू हुए

0: दो दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। अप्रस्तुत है महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान है।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। बहनों, इसी सुविचार के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला सभा के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा सस्नेह नमस्कार। बहनों, आज के दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की खास वजह ये है कि आज यानी 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। इनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1901 में शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहनों, ये दिन युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले सेवकों के प्रयासों की सराहना करना है। लोगों को जागरूक करने की दिशा में स्वास्थ्य संकटों और मानवता के प्रति रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मानवता, करुणा और सेवा के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और विश्व भर में संकटों को कम करने के लिए काम करते हैं। बहनों, ये एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य लोकतंत्र में धार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। ये संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से जुड़े सभी उद्यमियों की मदद करती है। रेड क्रॉस के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस डे की शुरुआत 1948 में हुई थी। आज हेनरी ड्यूनेट की प्रेरणा से 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कमिटीज टूल्स है, जिसमें ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो बहनों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाइड फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया है SD

0: मैनू कहा जाता है जान है तो जहान है। मैनू सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। आप चाहे पैदल हो या साइकिल पर, दो पहिया या चार पहिया की सवारी कर रहे हो, हर हाल में सावधानी बरतना जरूरी है। ट्रैफिक लाइट्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, साथ ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर अंकित निर्देशों के पालन में कोताही ना बरतें और वाहन की गति हमेशा धीमी रखें। साथ ही हेलमेट का उपयोग करें। बहनों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये एक द्विवार्षिक अभियान है जो 8 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को कम करना है। बहनों, इसका मुख्य फोकस पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसका महत्व सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उजागर करता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक स्तर पर मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सुरक्षित सड़कों की मांग करना है। बहनों, ये अभियान दुनिया भर के नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट वितरण और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ड्राइविंग को रोकना है। बहनों, सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और बहनों, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहनों, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताएं लेकर आते हैं और आज की वार्ता का विषय है रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी, और वार्ताकार हैं कीर्ति सक्सेना।
1: ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ब्लड प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतुओं में पाया जाता है। ब्लड की एक निश्चित मात्रा का हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन पाए जाती है। ब्लड का लगभग 7% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथोम्बिन मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। कभी कभी ब्लड में कुछ बाहरी पदार्थ जैसे प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों के पहुंचते ही प्लाज्मा में विशेष प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, तथा जो पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंटीजन RBC में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इसी प्रकार कुछ एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड कोशिकाएं, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं या ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद इनके मूलभूत लक्षण एक समान ही होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में एकत्र होने पर ये लाल रंग की हो जाती हैं। मनुष्य की एक RBC का व्यास 7.5 μm तथा मोटाई 1.2 μm होती है। एक RBC लगभग 100 दिन तक ही जीवित रहती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। RBC शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके साइटोप्लाज्म में लाल रंग का आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का होता है। सफेद रुधिर कणिकाएं जो कि अमीबा के समान अनियमित आकार की RBC से बड़ी लेकिन संख्या के हिसाब से कम मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 5000 से 9000 तक की संख्या में सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सफेद रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं एवं एग्रेन्युलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं। थर्ड नंबर का है थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि 2 μ से 4 μ तक व्यास वाली अनियमित आकार की होती हैं। ये अत्यंत कोमल होती हैं और केवल 10 दिन तक ही जीवित रहती हैं। यह रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम के मनुष्य में औसतन 5 लीटर ब्लड होगा। मानव रुधिर लाल, गाढ़ा एवं स्वाद में नमकीन

0: तथा पारदर्शी होता है। प्रायः रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन के संवहन की दर में कमी आ जाती है। आरबीसी के अत्यधिक विनाश या धीमे निर्माण या विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे रक्त की आवश्यकता कब पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना होने पर या किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देकर उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है जब वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति की चोट में थक्का जमने में 2 से 8 मिनट का ही समय लगता है। इसीलिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की अधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के लिए अब तक कोई भी दवा नहीं है, इसका केवल इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देना रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रक्तदान क्यों और कैसे, अर्थात रक्तदान के समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। प्रायः रक्त देने वाला व्यक्ति डोनर था दाता एवं प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रापक तथा रेसिपिएंट कहलाता है। रक्तदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 2 विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों के रक्त को मिलाया जाता है, तब इन ब्लड्स की आरबीसी में आपस में चिपककर गुच्छा बना लेती है। गुच्छे कभी कभी पतली रुधिर वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः रुधिर वाहिकाएं फट जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार आरबीसी के चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने वियना में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया। इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने सन 1900 में ह्यूमन ब्लड को 3 वर्गों में डिवाइड किया। इसके 2 साल बाद 1902 में लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट ने एक और ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर AB नाम दिया गया। इस प्रकार लैंडस्टीनर एंड उनके छात्रों ने अपने मानव ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB, इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं, इसमें एंटीजन का अभाव होता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर एंड रेसिपिएंट के ब्लड की जाँच की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन नहीं होता, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल ए एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल बी एंड AB ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप का ब्लड केवल AB ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। साथ में ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन ना होने के कारण यह स्वयं ओ तथा अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने या HIV संक्रमित मां से गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, TB, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या HIV का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, HIV संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने एवं HIV ग्रस्त संक्रमित माँ से उसके बच्चे को हो सकता है। यह HIV रोग लाइलाज है। अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड की जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह संक्रमित बीमारियां ब्लड डोनेट करते समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ संक्रमित सिरिंज को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ तरीके से रक्तदान किया जाना चाहिए, अर्थात ब्लड ग्रुप्स एंड संक्रमित ब्लड की जांच करके ही रोगी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं एवं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
1: रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी। अभी आपने ये वार्ता सुनी वार्ताकार कीर्ति सक्सेना से। जो खून तेरी रगों में बहता है वही मेरी रगों में बहता है, दान करते रहें अपने खून का, ये दान किसी को जीवन दे सकता है। और बहनों आप प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं फिल्म आराधना से। युगल स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का।

अभी आपने आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वर में आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। और बहनों अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी। बहनों इन दिनों सूर्य देव के तीखे तेवर और ताप का प्रभाव चरम पर है। दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने वाली धूप और गर्म हवाएं सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहनों ऐसी स्थिति में बचाव जरूरी है। गर्मी में तेज धूप और लू से बचने के लिए सुबह 10 से 11 बजे से सूर्यास्त तक बाहर जाने से बचें। गर्मी व धूप से बचने के लिए सूती या वायल के हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बहनों धूप में निकलने से पहले अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का उपयोग करें और घर से बाहर जाते समय सिर व कानों को सूती दुपट्टा अंगोछा या रूमाल से अच्छी तरह ढकें। बहनों चौड़ी किनारे वाली टोपी और यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहने।

और पैरों को धूप से बचाव के लिए सूती दस्ताने और मोजे पहने। बहनों, पर्याप्त मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, नींबू पानी, नारियल पानी पीते रहें। बहनों, खान पान में ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करते रहें, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, छाछ या मट्ठा, सतुआ का सेवन करते रहें। बहनों, गर्मी को देखते हुए दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। तला भुना ज्यादा मिर्च मसाले की बजाय हल्का और सादा भोजन करें। बहनों, घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के मोटे पर्दे डालें। बहनों, बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, इन्हें धूप में हरगिज ना जाने दें और समय समय पर पानी, इलेक्ट्रोल व ग्लूकोज मिलाकर पिलाते रहें। बहनों, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। बहनों, घर से बाहर जाते समय यदि जाना जरूरी ही है तो पानी की बोतल, भुंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें व समय समय पर इनका सेवन करते रहें। बहनों, ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। और बहनों, गर्मी के मौसम में मूक पशु पक्षियों के लिए भी चारे और दाने सहित पानी की व्यवस्था भी जरूर करें। इनके लिए किया गया आपका सेवा सहयोग आपको बहुत सुकून देगा। बहनों, आए हैं इस धरती पर तो कुछ अच्छा कार्य करते चलें। प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कर उसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं और हर परिस्थिति में अच्छी सोच रखें और सकारात्मक रहें। बहनों, अब चलने का समय हो गया है तो इतना जरूर कहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और बहनों, इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम। आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

0: और लोक संगीत कार्यक्रम की अगली रचना आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में।
1: ईश्वर समान महिमा महान हम

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गज़लें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: पानी की हर बूंद है अनमोल,
4: बहने ना दें इसे बेमोल।
3: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
4: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
5: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुँचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: कवि श्री राग तेलंग।
7: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है

0: कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रफी साहब का गाया है। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए हैं, लक्ष्मीकांत कहलाए फिल्म का नाम है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देशभर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। आईपीएल में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं छात्रों को पंजीयन दस्तावेज, सत्यापन विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
3: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
2: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी

0: रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना रामपुर का लक्ष्मण, फिल्म का नाम था। कैफी आजमी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं अनिल कवचाले, नेहा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। पुणे से अगला खत भेजा है प्रियंका, पंकज और आर्या ने। जरूर वरुड़ से ये खत लिख भेजा है बाबा साहेब बड़ौदे और चंद्र प्रभा बड़ौदे ने। ये खत आया है गांधी बाग आकोला से रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर और हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शुएब, मुस्तफा खान, साथ में है रऊफ भाई और शाहिद भाई। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत।

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फ़िल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम, गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमति पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवास से ही एक खत लिख भेजा है। जेल रोड देवास से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी ज़िला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैया लाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

संतोष आनंद ने इस गीत धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज कमलेश अवस्थी की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता सुदामा नगर रेटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने। हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी। जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज़ है सुरेश वाडेकर की। राहुल देव वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और शब्दकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम बेमिसाल।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मार्तंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: सखियों से बेहतर और क्या है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सगी से बात हो रही है हमारी? क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप।
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया। जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप, बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं, या किसी तरह का कोई काम करती हैं? क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला। कहाँ से लेती हैं, घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप? किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, तो
0: अच्छा, तो
1: मैं वहीं
0: ये,
1: से करती हूँ।
0: अच्छा तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीज़ें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से। तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में 2 बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में, तो
0: अच्छा
1: वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज़्यादातर।
0: अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग, आपके अनुभव के अनुसार, किस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और फ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं,
0: जी,
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं।
0: वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये
1: हाँ
0: कितनी
1: जी,
0: अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल ज़माना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं।
1: हाँ
0: तो
1: जी।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से,
0: जी
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है।
0: जी, तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से, क्या बात है। तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय
1: जी,
0: में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
1: दसवीं जी,
0: तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव है।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि
0: जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही
0: सही।
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह, ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी,
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे और
0: जी
1: दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सी की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन?
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ मैं।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे,
0: अरे
1: वहाँ
0: वाह।
1: आम जा सब के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो
1: हाँ।
0: बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत
1: और
0: सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में।
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: पालदा नाका इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी
0: जी। तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना आप?
1: हाँ 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते।
0: हाँ।
1: कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है इस दिल का।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी,
0: है ना?
1: मुझे गाना सुन रहा
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते। क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
0: जी
1: जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी, बताइए आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत,
0: जी
1: उसमें हाँ। और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी।

0: जी
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विद्यार्थी सुनते सुनते,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में, सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से, क्या बात
1: जी
0: है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशुवर्धन, मैं
0: जी,
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ,
0: क्या बात
1: तो मुझे
0: है!
1: अच्छा।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं। तो अभी भी
0: जी
1: उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है!
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: ताई से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं नहीं
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल
1: गुरु से शिष्यों में जाती है।

0: तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
1: ये
0: क्योंकि
1: बात
0: हम कुछ
1: आपने,
0: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
1: जी
0: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है ही तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की,
1: क्या
0: कि
1: बात है।
0: वो जैसे बोलती थी थई जोर से मारो तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
1: बिल्कुल
0: अब
1: सही
0: थोड़ी तो
1: कहा।
0: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल
0: उस
1: सही।
0: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
1: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
0: हाँ
1: ना
0: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
1: जी।
0: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
1: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी
0: कोशिश कर सकती हूँ,
1: जी।
0: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
1: जी
0: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
1: जी
0: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है, और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
1: क्या
0: और
1: बात है
0: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
1: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
0: जी
1: मुंह
0: जी
1: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
0: हाँ
1: झंकार
0: सर,
1: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी लगी
1: जी
0: थी तुम
1: जी वो
0: शबाना
1: बहुत
0: वाली।
1: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी, उज्जैन उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: हाँ, अच्छा
0: इस
1: था और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कुछ चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहाँ पे पशु भी हैं,
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी
1: हाँ है ना,
0: हैं।
1: है भैंस भैंस
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहाँ?
1: हाँ, दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार,
1: मैडम,
0: अपने
1: बच्चों
0: बच्चों की तरह।
1: की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: में
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ,
0: रह सके, बैठ
1: छाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से पिलाते हैं। फिर
0: जी तो थककर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: वो
0: होता
1: वहाँ
0: होगा।
1: पे घर है, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ
0: मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा
1: जी,
0: जी
1: मध्य प्रदेश
0: जी क्या
1: जी।
0: कर रही
1: मैम
0: थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो
1: सच्ची
0: बहुत अच्छी बात
1: सही
0: है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार ना एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो
0: जी
1: वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। बोल
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलंग वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक

गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूँ तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज़ बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज़ भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया, ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज़्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से 2 कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र 1 दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ पे लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आ धमकेगा। फिर मेरी सूनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद भर दी थी। झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है। ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थीं। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें,
नन्हे नरम हथेलियां, उसके निर्बल सांसें।

उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरव चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली
और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने माँ बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहाँ जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कस कर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

नमस्कार, मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिए न्यूज हेडलाइंस और इसके तुरंत बाद कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी भोपाल से।

सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और आईपीएल में आज

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों, आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का अनावश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली, हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक

0: पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी, भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए, ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाए। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत, नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण, जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं, औद्योगिक कचड़े को जल स्रोतों में बहाने से रोकें, कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो। जल स्रोतों का संरक्षण, नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए। जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए। जन जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका, सरकार नीतियों और योजनाएं, नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज की भूमिका, प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे, तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

साथियों, अभी हमने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज़ थी हेमलता की, जिसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। RRB योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप तक पहुंचते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब शुरू करते हैं फिल्म संगीत का ये सफ़र। शुरुआत इस गीत के साथ।

0: फिल्म संगीत का ये सफर आप तय कर रहे हैं मीडियम वी पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के संग। आपका साथ दे रहा है न्यूज ऑन AIR ऐप ही हमारी प्रसारण के लिए। लता मंगेशकर का स्वर, राजा जानी फिल्म का नाम, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल अभी आपने इस गीत में सुने। अब एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, एक बार फिर संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का ही है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, फिल्म का नाम अभिनेत्री।
1: हंसो मत।

फिल्म संगीत में ये सुरीले गीत आप तक पहुंच रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत आपने सुना फिल्म अभिनेत्री से, आपकी कसम। आइए अब इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं आर डी बर्मन के संगीत से सजा आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं आरडी बर्मन के संगीत से सजा वो गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया, वर्मा मलिक का लिखा गीत अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम नागिन।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहाँ पूरा होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर होगा मन भावन। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10 बजे सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके मैसेज आपके गीत रात 9:30 पर। कृषि जगत में आज शाम 7:21 से आप सुनेंगे कांस घास का उन्मूलन विषय पर डॉक्टर पी के सिंह से ली गई जानकारी। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत में आज कलाकार हैं रेखा अग्रवाल। और सुगम संगीत में शाम 6:45 से सुनिएगा निकिता काढ़े की गाई कुछ रचनाएं। एक नज़र कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। यहीं से अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती रात्रि 9 बजे से रिले होगा। कृषि जगत में कल शाम 7:21 से सुनिएगा गम्मत। शाम 6:30 से लोक संगीत में कल कलाकार हैं राम सेवक श्रीवास्तव। कीर्ति राजपूत की गाई रचनाएं सुगम संगीत में सुनिएगा शाम 6:45 से। फिल्मों से चुने देशभक्ति गीत शाम 6:10 पर। सारंग

0: लोक रसधार में सुबह 9 बजे कलाकार हैं रविशंकर श्रीवास्तव और रानू चौधरी। समन्वित कार्यक्रम में रूपक का अनुप्रसारण आकाशवाणी भोपाल से होगा सुबह 8:30 पर। और गुड मॉर्निंग जबलपुर का समय है रोज़ की तरह कल सुबह 7:20 पर। कृषि सामिकी में होगी मत्स्य पालन तालाब की तैयारी पर जानकारी सुबह 6:45 पर। श्री रामचरितमानस गान 6:35 पर और चिंतन सुबह 6:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्त के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और आईपीएल में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी

0: जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रविंद्रनाथ
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर

0: रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए रेखा अग्रवाल के गाए बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आज रेखा अग्रवाल के गाए ये बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेखा अग्रवाल के गाए बुंदेली लोकगीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप तक पहुंचते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी। शाम के 6:45 हो रहे हैं। श्रोताओ, अब वक्त है सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में लीजिए आपको सुनवाते हैं निकिता काढ़े के गाए ये भजन और गीत।

श्रोता आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का मीडियम वेव पर आकाशवाणी के केंद्र से और अपने स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए भी। सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं निकिता काढ़े। इनके गाए कबीर के इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं इनका गाया नानक का ये भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निकिता काढ़े के गाए भजन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडी

0: के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन के पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के MD अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। श्रोता सुने किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम कृषि जगत।

सो किसान भैया हरो, आज फिर आ गई आपकी रजनी बहन आपसे मिलवे के लाने। सो हमारे सभी किसान भैया बिन्ना जज्जी भौजी हरन को रजनी बहन की दो ही हाथ जोड़ के राम राम। आज तो भंसारे आम के पेड़ पे कोयल कूक रही थी, इतो नौनो लग रहा तो कि का बताएं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन भैया जेठ को महीना है, हवा का बेलो ठंडी रहे घंटा दो घंटा, फिर तो दोपहरिया तपना ही है। सो जो ताप भी तो हमई के काम को है, सवेरे से गेहूं दौड़ा रहे हो फहरा दे छत पे, साल भर को फुर्सत, दो दिना के काम में साल भर की तैयारी हो गई। अब को कछु कहे, हम तो चार कदम आगे की सोच के चला थे और चला ही चाहिए। आज की तैयारी कल के काम आते, सांची कह रहा है कि नहीं। हर बात सोचो समझो जानो कि

पहले से कछु तैयारी करने पर आते हैं, जैसे बुआई के पहले जुताई करने पर आते हैं, खेत तैयार करने पर आते हैं, बरसात के पहले घर में कछु पानी से बचवे के इंतजार करने पर आते हैं। वैसे ही हर मौसम हर हाल में स्वस्थ रहवे के लाने तो सोई कछु तैयारी करने पड़ती हैं। अब हम जो जेठ के महीना की बात करें, सो भैया सबसे ज़्यादा लू चला थे, और जौन सोच के देखियो कि हमारे जेठ हने जब घर के अंगना में आते हैं, सो खांस के आते हैं सो भी सबरी बहुएँ सतर्क हो जाती हैंगी। सो लो ऐसे ही सोच लो कि ई बार तो भी दो दो जेठ आ रहे हैंगे, है कि नहीं, अधिक मास है गो। सो भैया दो जेठ आने सो हमें दो बार की तैयारी करके धन्य, सांची कह रहे कि नहीं। और जो जेठ की दोपहरिया जब तपत हैगी सो हमें कितनी सारी बातन को ध्यान रखने पड़त। और अब जैसे हमारे भैया आ रहे निकल रहे जल्दी जल्दी बाहर हैं, सो बहुत ही हरे पीछे से दौड़ दौड़ के गमछा पकड़ा है, उनकी कुर्ता की जेब में पेंट की जेब में वो डाल दें, प्याज की एक गांठ डाल दें, चलते समय कहूँ पना पे आ दें, कहूँ मठा पे आ दें, और जौन भी चले गए अपने काम पे, सो फिर घर में खुद को कछु ध्यान नहीं धरने कि अरे भैया तुम भी तो घर में रह के 10 बार छत पे जा रही, अंगना में कर रही, खा रहे जा रही, तो खुद भी तो पी लो, अपनों भी तो ध्यान रखने हैं, और खुद भी अपनो कान अच्छे से बांध लो कि जकाए तुम्हें का लू नहीं लगे, तुम कितने से आई तुम्हें तो खुद ही लग जाए लू। और भैया सबसे ज़्यादा तो जो ध्यान धन्य पढ़ा देंगे कि हमारे लड़का बच्चा हारे नहीं बाहर से जल्दी जल्दी काम करके आए और बैठ के उनने कूलर की ठंडी हवा में बैठ गए और ठंडो पानी पी लो, बस जई में तो लू पकड़ जातेगी। तो बाहर से जब भी आने हैं को भी आए सो तनक जो ध्यान रखना कि 2 मिनट ने ठहर जाओ, तुरंत आके बाहर से और फिर पानी ना पियो ठंडो, अरे नेक कछु खा लो, नहीं आ तो एक रोटी में अचार ही लगा के खा लो, नेक सो साग ही लगा के खा लो, अरे कछु नहीं आ तो 2 बिस्कुट ही खा लो, और 2 मिनट रुक जाओ फिर बाकी बात पानी पियो। और नेक देर ऐसो नहीं करने कि बाहर से आए और सीधे ठंडी हवा में बैठ गए, अरे भैया जब हम और बाहर रहते हैं तो हमारे शरीर को ताप बढ़ जात कि नहीं बढ़ जात, देखो घाम कैसो सहन नहीं होता हमसे इतना ज़्यादा हो जाते है वो, और फिर जब हम भीतर आते हैं तो एक तो घर को ताप कम रहते हैं, ऊपर से हम ठंडी हवा में बैठ जाएं तो हमारे शरीर को वो शरीर गर्म रहते हैं और एकदम से ऊखो ठंडी हवा लगाते, तो जो ताप को एकदम से बढ़वो और कम घटवो जो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाते, वो ऐसे ही में फिर हमारन को लू लग जाते है, या मान लो को ऊखो ब्लड प्रेशर हो की शिकायत होते है कि सुबह को ब्लड प्रेशर भी घट बढ़ जाते है कि नहीं। सो इन सब चीज़न को हमें बहुत ध्यान रखने पड़ा थे। और बाहर भी जब हम कराते हैं लंबे समय तक हमें बाहर रह के खेतन में काम करने, मान लो या हम अपने और भी कछु बाहर को काम कराते हैं, हमारे बहुत सारे भैया आ रहे हैं को मार्केटिंग को सेल्समैन को काम होते है को, सो उन्हें भी जा बात को ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कि तू जा ही रहे बहुत लंबी लंबी गाड़ी चला नहीं पड़ रही हैगी, सो नेक किनारे रुक जाओ, नेक छाँव में रुक जाओ, कि तू दुकान हैगी 2 मिनट रुक जाओ, अपने संगे हमेशा पानी लाए रहो, 2 मिनट रुक जाओ, कछु एक दो बिस्कुट खा लाए कछु खा के और पानी पी लो, और फिर बाकी बात फिर आगे बढ़े। और कान तो भैया अच्छे से ही बांध के रखने हैगी, कैसे कि सबसे पहले तो लू कान ही से लगाते हैगी। सो भैया बस जो ही कहते हैं आप और उनसे कि जब आप निकलो और कितों घने पेड़ की छइयां दिख जाए सो होते जरूर से रुक जाइयो, जो ही तो हमारे सुंदर लाल भैया भी कह रहे हैं, चलो सुनाते हैं चलो।

0: जो हमारे सुंदरलाल विश्वकर्मा भैया ने हमें लोकगीत सुना। और भैया हरों वैसे भी देखो जो ही कही जाते हैं कि भैया जब भी कहता हूँ हम धूप में निकलें सो नेक रुक जाएं। और हमारे घर है भी अगर मान लो सामने कौन पेड़ है अच्छो, और कोशिश तो हम जो ही करें कि पेड़ होए तो बहुत अच्छा है, नहीं होए तो ज़रूर अपने घर के आसपास हम वृक्षारोपण करें। एक ऐसो घनो वृक्ष होए छायादार हमारे घर के सामने कि राहगीर दो पल के लाने रुकें और रुक के उन्हें जरा सुकून जरा शांति जरा ठंडक मिल जाए। तो देखो जरा कितने अच्छी बात है कि अगर हमारे देहरी पे कोखों खड़े होके नेक्स्ट शांति मिले। और फिर बाकी बात अगर मान लो हमसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम अगर कोखों कछु मान लो शरबत पिया सकते हैं, जलजीरा पिया सकते हैं, पनो पिया सकते हैं, तो जा से बढ़ के तो और कछु है भी नहीं है। काहे कि निस्वार्थ सेवा तो ईश्वर की सच्ची पूजा होत है। और जा से बढ़ के तो सोच के देखो जरा और का हो सकता है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से कोखों पानी भी पिया दें। ऐसे ही युद्ध महामारी और प्राकृतिक आपदा में निस्वार्थ सेवा करने वाले स्वयं सेवक के सम्मान में हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाओ जाते हैं। जो दिना 8 मई को इसे मनाओ जाते हैं कैसे कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सर हेनरी ड्यूनेंट की जयंती होत है। सो उन्हीं के सम्मान में पूरे विश्व में निस्वार्थ सेवा के संकल्प के संगे आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाओ जाते हैं। भैया आ रहा हूँ बातें तो बहुत सारी लेके आए हैं, सो अब खूब सारी बातें सुने, लेकिन पहले सुनाते हैं जो संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए

0: लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: भैया हरो, आज बहुत सारी बातें लेके आए हैं आप और उनसे करबे के लाने। उनमें एक बात तो जो बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे खेतन में तरह तरह के खरपतवार उग आते हैंगे और जौन उन खरपतवार हैं उनकी साफ़ सफाई हमें समय समय पे करवाने पड़ा था, नहीं तो फिर भी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर उनकी जड़ें मिट्टी को इस जा तरह से बांध लेती हैंगी कि फिर उनको निकारवो और फिर खेत को जुतवावो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और फिर इतनी गहरी जुताई करने पड़त हैगी तब जाके कहूँ जो है वो हमारा खेत तैयार हो पाते है। सो उन्हीं में से एक होता हैगी हमारी कांस घास। सो कांस तो कहने लगत की इतनी मजबूत होते हैगी और जितनी बड़ी हमें कांस दिखाते हैं वहाँ से दुगनी तुगनी बाकी जड़ें होती हैं और वे इतनी तेज़ी से फैलती हैंगी पूरे खेत में और पूरी मिट्टी को बांध लेती हैंगी। और फिर अगर एक बार कांस घास जो है वो बढ़त चली गई तो फिर बाको निकालवो, बाको अलग करवो बहुत कठिन काम हो जाते हैं, फिर वह खेत में जुताई भी बड़ी मुश्किल हो जाते है। तो कांस घास का उन्मूलन जो ही हमारो आज को विषय है भेंटवार्ता को। सो जामे हमें जानकारी दे रहे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पी के सिंह साहब और उनसे बातचीत कर रहे हमारे विपिन भैया।
2: किसान बहन भाइयों, राम राम। कई व्याधियाँ होती हैं, कीट, रोग, और एक जो ऐसी व्याधि जिसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है वो होती है खरपतवार। खरपतवार में भी अलग अलग खरपतवारें होती हैं, कुछ तो आसानी से नियंत्रित हो जाती हैं परंतु कुछ ऐसी होती हैं जिनको नियंत्रण करने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी प्रकार की एक खरपतवार है कांस घास, जिसके नियंत्रण के बारे में आज हम आपको बताएंगे और ये जानकारी लेंगे डॉक्टर पी के सिंह साहब से। सिंह साहब, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: हमारे किसान बहन भाइयों को वैसे तो मालूम है कांस घास क्या होती, परंतु इसके बारे में हमें थोड़ा सा संक्षेप में बताएं।
3: इसका वैज्ञानिक नाम सैक्रम स्पॉन्टेनियस है। यह एक वर्षीय खरपतवार है, और बल्कि ये इसको कह सकते हैं कि यह बहुवर्षीय खरपतवार है, क्योंकि जो वो वार्षिक होने के साथ साथ ये बहुवार्षिक हो जाता है।
2: जी जी।
3: लगभग 40 से 50 लाख हेक्टेयर इसकी चपेट में है।
2: जी।
3: और इसकी जो बढ़वार होती है इस खरपतवार की वो अप्रैल से सितंबर तक होती है, और इसका प्रजनन जो होता है मुख्यतः प्रकंदों जो राइजोम होता है जमीन के नीचे उसके द्वारा होता है। कहीं कहीं पर इसका जो फैलाव है वो बीजों के द्वारा भी पाया गया है।
2: जी।
3: इसको अगर नियंत्रित समय से किसान भाई नहीं करते हैं तो पहले तो ये पैचेज में आता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे खेत को जो है ये कवर कर लेता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सकरी, लंबी, पतली होती हैं और किनारे से थोड़ी मुड़ी होती हैं।
2: जी।
3: साथ ही साथ ये देखा गया है कि किसान भाई जो है अगर उसको ध्यान दें तो कांस के पौधे में सितंबर से अक्टूबर के माह में रेशम की तरह से सफ़ेद फूल जो है वो निकलता है लंबे लंबे।
2: जी, जी, जी।
3: और उसके फूल जो है वो उसे बीज बन करके काफ़ी दूर तक हवा से फैल जाते हैं। तो ये खरपतवार जो है वो काफ़ी जड़ें नीचे जमीन में बनाता है, और जहाँ पर ये पनप गया वहाँ पर दूसरी जो है वो वनस्पति को जो है ये फैलने और पनपने नहीं देता।
2: मतलब एक तरह से बंजर ना होते हुए भी धरती बंजर जैसी।
3: बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल सही आपने कहा है।
2: अब बात आती है जब ये इतनी खतरनाक खरपतवार है, इतना नुकसान करती किसान बहन भाइयों का, तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे इसके नियंत्रण के उपाय।
3: हाँ, नियंत्रण के लिए इसमें कई विधियां हैं। सबसे सरल और परंपरागत विधि है तो उसकी गहरी खुदाई करके जड़ों को निकाल करके और उनको नष्ट कर दें। उसके बाद दूसरी जो विधि है जो सबसे कारगर विधि है वो है कि गर्मियों में गहरी जुताई करें। किसान भाई जब खेत खाली होता है और जिन खेतों में कांस की समस्या हो, गुंदला की समस्या हो और मोथा की समस्या हो, तीनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट होता है,
2: गहरी जुताई।
3: और गहरी जुताई, उस गहरी जुताई का उद्देश्य ये होता है कि इनकी जड़ें जो आपस में जाल की तरह से जमीन के नीचे फैली होती हैं और काफ़ी गहराई तक रहती हैं, वो आपस में टूट जाएं। साथ ही साथ गर्मियों में टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री

0: तक जाता है, तो जो ऊपरी सतह पर कुछ रह भी जाएंगे जो, तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जो सोलराइजेशन यानी सूर्यीकरण के द्वारा वो
1: जी
0: सोलराइज हो जाते हैं, और उसमें फिर पुनः पनपने की क्षमता लगभग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
1: जी
0: लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था इनके जड़ों को तोड़ना आपस में, उसका कारण ये था कि जब ये टूट जाएंगे तो उसके बाद यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो किसान भाई एक सिंचाई करा दे वहां पर, और
1: जी
0: यदि सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वर्षा ऋतु का इंतजार करें। जो पहला मानसून आता है, एक दो फ्लशेस के बाद आप देखेंगे कि जैसे खेत में नमी आई, ये जितनी जड़ें टूटी हुई आपस में नीचे मिट्टी में दबी हुई, सब के सब जर्मिनेट करेंगी, पनपेंगी,
1: जी
0: और हम वही चाहते हैं कि ये अपनी माद से बाहर आवें। जब ये सारे के सारे जर्मिनेट होकर के दो दो पत्तियों की हो जाएं,
1: जी
0: तो उसके ऊपर जो है एक रसायन है ग्लाइफोसेट,
1: ग्लाइफोसेट
0: इस रसायन का 100 से 150 मिलीलीटर प्रति टंकी, यानी कि एक टंकी जो 14 से 15 लीटर पानी की क्षमता वाली होती है,
1: जी
0: उसमें 100 से 150 मिलीलीटर ग्लाइफोसेट दवा को मिलावें और 50 से 60 ग्राम यूरिया घोल करके इसमें मिला दें,
1: जी
0: और इसका सलूशन बना करके किसान भाई ये जो दो दो पत्तियों वाले कांस जो पूरे खेत में निकले हुए हैं उनको अच्छे से नहला दें। फिर धीरे धीरे ये कांस वहां से सूख जाती है, और तब तक जुलाई अगस्त का महीना आता है, किसान भाई खेत की तैयारी करके अपनी फसल को उसमें लगा दें, खेत को खाली न छोड़ें।
1: जी
0: यदि यह प्रक्रिया किसान भाई 2 साल लगातार करते हैं तो लगभग 99% पाया गया है कि कांस वहां से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके साथ साथ जो रैमी अनुसंधान केंद्र आसाम में है, वहां के प्रयोग से पाया गया है कि एक विलक्षणी नाम का पौधा होता है जिसको टेफ्रोसिया कैंडिडा कहते हैं,
1: जी
0: इसका 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जून जुलाई के महीने में वर्षा प्रारंभ होने से पहले बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखने के पश्चात इसको खेतों में बो देते हैं।
1: जी
0: तो इसके जो रूट होते हैं, जहां पर कांस के रूट हैं उनके साथ एलोलोपैथिक इफेक्ट यानी कि रूट कंपटीशन करते हैं, और
1: जी
0: ये देखा गया है कि वहां पर ये इस तरह से आच्छादित हो जाते हैं कि कांस वहां पर धीरे धीरे सप्रेस होकर के दबने लगता है, और 1-2 सालों के बाद वहां से कांस विलुप्त हो जाता है,
1: आपने बताया विलक्षणी पौधा।
0: विलक्षणी पौधा। साथ ही साथ ये देखा गया है कि यदि आप अपना फसल चक्र भी यदि आप इस प्रकार का अपनाते हैं जिसमें कि आप 1-2 बार ढैंचा सनहन की खेती करें खेत में, उससे
1: जी
0: एक तो आपके खेत को ग्रीन मैन्योरिंग हो जाएगी
1: जी
0: और दूसरा तो ये कांस को वहां से धीरे धीरे दबा करके जो वो समाप्त कर देता है।
1: तो ये थे तरीके कांस घास के नियंत्रण के, समेकित उपाय भी आपने बताए, इस तरह से किसान मान भाई इसका नियंत्रण कर सकते हैं लंबे समय तक। हम बोलते हैं कि सावधानी उपचार से ज्यादा बेहतर मानी जाती है,
0: बिल्कुल,
1: शुरू में ध्यान रखनी है।
0: जहां पर भी किसान भाई इसकी गहरी जुताई करके जड़ों को निकाल रहे हैं तो उसको यदि नष्ट न करके किसी दूसरी जगह पर फेंकेंगे तो वहां से वो पनपेगा और दूसरी जगहों पर भी फैलेगा। तो
1: जी
0: किसान भाई उसको इसकी जड़ों को सक्कर्स को जब इकट्ठा करें तो उसको जला दे। दूसरा, रसायन का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि जो मात्रा बताई गई है, जो विधि बताई गई है, और जिस समय पर इसका प्रयोग करने को बताया गया है
1: जी
0: उसी तरीके से जो है इसका प्रयोग करें। और साथ ही साथ चूंकि ये इस तरह की दवा है कि इसका पूरी तरह से पत्तियों के ऊपर फैला होना चाहिए, तो उसके लिए नेक्सेप स्प्रेयर का प्रयोग सर्वोत्तम रहता है।
1: जी
0: किसान भाई फ्लैट फैन नोजल और नेक्सेप स्प्रेयर का प्रयोग करें। कई जगहों पर किसान पहले मेड़ों पर इसको लगाते थे क्योंकि
1: जी
0: मृदा क्षरण को रोकने के लिए ये इसकी जड़ें चूंकि काफी गहरी होती हैं तो
1: जी
0: बहुत काम करता था, वो मिट्टियों को बांध कर रखता था, लेकिन वहां से उन्होंने सावधानी नहीं की और धीरे धीरे वो फैलते फैलते खेतों में पहुंचा
1: जी
0: और अब तो एक बड़ी भारी समस्या के रूप में आ गया है। जड़ें या उसकी जो है वो ऊपर के फूल टूट करके खेतों में न गिरे,
1: जी
0: और बेहतर यह होगा कि इसको किसी ऐसी जगह पर लगावें अगर उनको प्रयोग करना है जो कि खेतों से दूर हो तो
1: दूर
0: ज्यादा बेहतर होगा।
1: सिंह साहब, सावधानी की बात इसलिए होती है कि इसमें अगर शुरू से सावधान रहेंगे तो इसका खर्चे की नौबत ही नहीं आएगी,
0: बिल्कुल
1: लाभ बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल, लाभ बढ़ जाएगा। खेत को खाली कभी न छोड़ें। यदि आपने खेत को खाली रखा है तो आपकी सारी मेहनत डांड हो जाएगी क्योंकि वहां पर पुनः ये फैल जाएगा।
1: जी तो डॉक्टर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जो भेंट वार्ता कांस घास का उन्मूलन, और विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पी

0: के सिंह साहब।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: भैया, अब जेठ को महीना है और खूब सारा को टेम है। जे आए ते आए, ब्याह बरातें दिख रही, घरे घरे ढोलक बजत सुनाई दे रही, सब जने बैठे हैं, मंगल गीत गा रहे हैंगे। ब्याह की तैयारी हो रही, बरातन की तैयारी हो रही, लगन की तैयारी हो रही। भैया हरो, जब भी बरा ब्याह बारात की तैयारी होत हैगी, हमारन को सबसे पहले तो हम उन्हें गणेश भगवान को ध्यान करत हैंगे और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भैया हमारा जो सब रे ब्याह काज हैं, जो सब अच्छे से और कुशल मंगल तरीके से पूरा हो जाए। और जब ब्याह काज की तैयारी करते हैं तो कितनी छोटी छोटी सी बातन को हमारन को ध्यान रखने पड़ते हैं। घर में इतने सारे मेहमान आते हैं, उनकी व्यवस्था करने हमें, फिर सबके खुआवे पियावे की व्यवस्था करने, फिर गर्मी को मौसम है को सुझा बात को ध्यान रखने कि भैया खावे पीवे में कौन ऐसी चीज़ नहीं आ जाए कि कोई को नुकसान कर जाए है, और कोई को पेट खराब हो, कोई की तबीयत बिगड़े। ब्याह काज में है हमारे बड़े बूढ़े भी आते, लड़का बच्चा भी आते, छोटे बड़े भी आते हैंगे सब जने, तो उनको ध्यान हमें रखने पड़ा वो। और भैया हरों, फिर बाकी संगे संगे चार चार जने बाजार को काम कर भी निकलत हैंगे, मोटरसाइकिलन से निकल रहे, खूब बड़े बड़े थैला लेके आ रहे, सब्जी भर के आ रही और भी सब सामान आ रहा, और डलियाँ टिपरियाँ सूपा जाने का तो लगत है मिठाई के डिब्बा, और जे बड़े बड़े थैला भर भर के दो दो तीन तीन जने मोटरसाइकिल पर लद के चले आते। अब आप जो सोचो कि ऐसे में कितनों ध्यान रखने पड़ते हर बात को, और फिर हमारन को लगने पर लगत अगर मान लो ऐसे में कछु घटना दुर्घटना हो जाते है तो फिर हमें लगत कि जाने हमसे कौन सी गलती हो गई, फिर हम अपने देवी देवता मनावे बैठ जाते हैंगे। भैया जब भी घर से निकल रहे हो, चाहे घर में ब्याह काज हो चाहे हम उसे ही निकलें, हमें छोटी छोटी सी बातन को तो ध्यान धरने ही पड़त है गो। और जब हम इन छोटी छोटी सी बातन को ध्यान रखते हैं तब फिर हमें जो बात समझ में आते हैगी कि हाँ भैया हम सबरी घटना दुर्घटना से बच के कुशल मंगल तरीके से हम आए थे ब्याह ने पट गए गो। अब भैया आ रहा हूँ, देखो बारात की तैयारी होते हैगी, हम और अन्य मान लोग कह रही कि अरे हम इतने 50 बराती हैं, 60 बराती हैं, 70 बराती हैंगे, वह हिसाब से हमने अपनी एक छोटी बस कर ली हैगी, और फिर बाकी संगे हमने लड़का बच्चा तो गिने ही नहीं है, और फिर बाकी संगे हमारे जो और मान लो दूल्हा के दोस्त हैंगे और मोहल्ला पुरा के हैंगे चार छः जने। कबूँ कबूँ का होता है कि हम सोचत 50 है, गिनती हो जाट 60-70-80 तक पहुँच जाते हैगी, अब कैसे लेके जाएं। हम और हैं बिना सोचे समझे भरन लगाते हैंगे गाड़ी में, या मान लो कऊ जगह तो अब कछु नहीं है बस की व्यवस्था, पास ही खो जाने हैगी, बरात सुनने कही अरे ट्रैक्टर में भर के ले चलो सब जने, सब जने ट्रैक्टर में लद गए और एक के बाद एक भरत चले जा रहे हैंगे, कछु जने मोटरसाइकिलन पे बैठ गए हैंगे और संगे संगे चले जा रहे, और बाकी बात फिर भगवान ना करे कैसी कैसी घटनाएं सुनाई देती, दूसरे दिन आप पता लगे कि हम अखबार में पढ़ रहे, हमारे मोबाइल में कदम से खबर मिल रही कि बारात के लाने ट्रैक्टर टाली जा रही थी सुबह पलट गई और इतने लोगों को चोटें लग गई, इतने लोगों को ऐसा होगा वैसा होगा। अब कैसो लगत भैया सुनवे में, फिर हम और उनको लगन लगाते हैं कि जाने का गलती हो गई ऐसी, हम देवी देवता मनावे बैठ जाते हैं। सुबह देवी देवता जो ही तो हमें सिखाते हैंगे कि भैया सावधानी तो हमको खुद को रखने है कि नहीं, जब हम सावधानी रखें तब फिर हमारे ब्याह काज अच्छी तरह से हुई है। तो सबसे पहले तो आप और उनसे जो ही के वो चाहते हैं कि जब भी हमारे घर में ब्याह काज है, हमारी बारात जाने है, कि कछु भी हम और भी मान लो कौन कार्यक्रम की ऐसी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले तो हम इतनी संख्या निर्धारित करें कि हमको कितने लोगों को लेके जाने हैं, और फिर हम जो कोशिश करें कि फिर बसें ज़्यादा नहीं हो, काय से कि मान लो हमने बस ही कर ली अगर, तो भैया जितने जने आराम से जा पाएँ हम उतने ही जनन को लेके जाएँ, जितनी सीट उतनी सवारी सांची कहें तो। और अगर मान लो हम ट्रैक्टर ट्राली में डग्गा में भी लेके जा रहे हैंगे, सो हमें ऐसे नहीं भरने हैं कि हम एक निश्चित अंदाजा लगा लें कि भैया जहाँ में इतने जने आ पाते हैंगे, और फिर हम उतने ही जनन के हाथ जोड़ें, उतने ही जनन को बुलाएं, उतने ही जनन को पूछें जितनी की हमारी हैसियत हैगी। कबों कबों का होता है कि हम और संकोच में रह जाते हैंगे कि हमको उसे कह नहीं पात कि हाँ अब जो लगत कि अरे उन्हें नहीं बुलाओ तो बुरो लग जाए, उन्हें नहीं पूछी तो उन्हें बुरो लग जाए। सो भैया फिर होत का है गो जब बुरो लगे कि चक्कर में हम और उनको ऐसा लगत कि एक नाम ना धल लेगी, देख लो उनने हमसे पूछी नहीं है, उनने हमें बुलाओ नहीं है। लेकिन बात जो होता है कि हमारी क्षमता उतनी नहीं होती है, फिर ऐसे में हम भर भर के ले जाते हैंगे, और फिर बाकी संगे कितनी बड़ी परेशानी को सामना सबको करने पड़ता है गो। तो इन सब चीज़न को विशेष रूप से हमें ध्यान धरना चाहिए कि भैया कितों भी हमारी बारात जा रही है, बस में जा रही हो चाहे ट्रैक्टर ट्राली में जा रही हो चाहे मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, तो वहाँ में विशेष रूप से हम ध्यान धरें कि भर के नहीं जाएं, है ना, जितनी बाकी क्षमता उतनी ले जाएं। फिर बाकी बात मान लो सड़कन पे भी हम बराते निकारत हैंगे, तो वासा में भी हमें जो ध्यान रखने कि कितों भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन पाए। कैसे कि भैया दूल्हा तो बैठ गया है गो बग्गी पे, वो तो अपनी खुशी के मारे कितों ध्यान ही नहीं जा रहे हो, और लड़का बच्चा है जो संगे बे नचवे गावे में लगे हैंगे अपने, तो कछु चार जनन की जिम्मेदारी ऐसी उन्हें लाएं चाहिए कि भैया ट्रैफिक के निकरवे की भी जगह हो सड़क पे, जो नैया कि हमने पूरी सड़क घेर ली। सोचो कौन को बस पकड़ने, कौन को ट्रेन पकड़ने है कि नहीं, कौन की तबीयत खराब है बाखों अस्पताल जाने, तो फिर कितने से निकलें। तो जो एक हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम सड़क पे निकले हैं अपनी बारात लेके निकले हैं, तो वहाँ में हम हमेशा इतनी जगह बना के चलें कि भैया आराम से ट्रैफिक गाड़ियाँ सब निकल जाएँ। और हमारे तो बहुत ही शुभ मानो जात है गो कि जब भी हमारे घर में कोनू ब्याह काज होता है और कोनू भी परेशानी हमें आत हैगी, तो और हम भगवान से प्रार्थना कराते हैं, और विशेष रूप से लाला हरदौल से प्रार्थना करी जात हैगी कि हमारे घर में ब्याह काज में एक छींटा भी पड़े तो तुम आके संभाल लियो हमारे हरदौल लाला। सो सवई से हरदौल लाला से प्रार्थना करते हैं कि जी के घर में भी ब्याह काज होएं, सो वे सब कुशल मंगल होएं, हरदौल लाला आके सबके घर के ब्याह काज संवारें।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: तो भैया हरो, देखो मौसम और जलवायु की बात हो रही तो हमारन को भी तो देखो ध्यान धन्य है। तो जा बात तो हमारन, हमने अपनी तरफ से बहुत आपको बतावे की कोशिश करी कि जा मौसम में हमें स्वास्थ्य को काका ध्यान रखने हैं। बाकी बात फिर हमें एक और चीज़ को ध्यान रखने हैं, जाकि तैयारी भी हमें अभी से करने पड़े कि भैया अब सोचो, एक बार सोच के देखियो कि क्या पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी जब हमारे छोटे होते। सबको याद हुई है कि कैसे हम सब जने बैठा छत पे सोते और बढ़िया रात के ठंडी हवा चलती। अब ऐसा कहा होगा कि रात के हमें ठंडी हवा नहीं मिलत हैगी बिल्कुल से। और जो इतना तापमान कबूँ हमारे सुनते कि ज्याए त्याए देखो तो 46 डिग्री तो 47 डिग्री तो 45 डिग्री इतनो तापमान हो जाते हैगो, और कितनो ज़्यादा सब जगह गर्म होने लगो। सो ऐसी कई जात की जो हैगी ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग माने का, ग्लोबल माने कि ग्लोब माने हमारी धरती, हमारी पृथ्वी महारानी, हमारी पृथ्वी माता, धरती माता। सो बेकाय इतनी गर्म हो रही हैंगी, बे इसे गर्म हो रही काय से कि उनकी हरियाली, उनकी जो चूना रहेगी हरियाली वाली, सुबह धीरे धीरे सिमट के छोटी हो जा रही। अब जब हरियाली की जो चूना रहे हमारी धरती माता की, वह छोटी हो जाए है तो फिर सूरज को ताप तो हमारी धरती माता को लगे ही लगे। कैसे कि जितनी वे ढकी रहे हैं हरी चूनर से, सो उतनी ठंडक मिले। दो पल के लाने सोच के देखो कितना, अगर हम रास्ता से जा रहे हैं होते हरे हरे बढ़िया पेड़ लगे हैंगे, बड़े ऊंचे वृक्ष लगे, तो वाह उतनी रास्ता में हमें कैसी अच्छी ठंडक सी लगत है, लगत की नहीं। और जौन जिते पेड़ ना हुए सो एकदम से कैसे हमें बिल्कुल लगत की लू और इतनो तेज घाम लगत है कि लगत की हमारा मुड़े ही चटकन लगो हुए। तो जो सब भी हमारी जिम्मेदारी है कि जनसंख्या के संग धीरे धीरे नगरन को विकास हो रहा हो, शहरन को विकास हो रहा हो, और विकास की वो जरूरी है। कैसे कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि तो कितने आदमी रहे हैं, उनके लहवे के लाने जगह कॉलोनी तो बनाना ही पड़े। लेकिन जो हम

हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितने भी पेड़ कट रहे वासे दूने पेड़ लगाए जाएं। कैसे कि जब पेड़ लगे हमारी धरती माता की चूनर जो है वो हरी रहे, तब जाके ठंडक हुई है, तब जाके शीतलता आए। और भैया हरों जा बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़े कैसे।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुनते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब समाचार संध्या। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
4: नमस्कार।
5: धन्यवाद।
3: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
6: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
3: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
7: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेके घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
3: जी।
7: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपरा साफ करना है।
3: जी, तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
4: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था

0: बिंदु अधिकारी जी पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी
0: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है खास करके पहले वामपंथी सरकार में था इसके बाद में अभी तृणमूल के ए में भी एक प्रकार से हथियार बन गया कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बात जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया क्योंकि SIR के माध्यम से जितने फर्जी वोटर्स गोस्ट वोटर्स भी निकल गए पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी आपसे भी यही पूछना चाहूंगी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में इनके पक्ष में काम कर रहे हैं।
2: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी
2: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने वो तो बहुत ही ये 15 साल में पहली बार नहीं 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए। तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं वो कोई फैक्टर नहीं होगा पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री वो भी लोग भूले नहीं है। वकफ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं वो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे ये अच्छा नहीं लगा
1: जी।
2: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है और इस बार का वोट उसके खिलाफ है ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
3: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के क्रूरता के उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
1: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा।
4: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं इसके पहले 3.5 दशक का मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है जब सारा देश आगे बढ़ रहा था हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे होते तो कोई इंडस्ट्री नहीं है भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो 7th Pay Commission पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका DA इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बनर्जी जी वो जनता के पैसा टैक्स की पैसा खर्च करके वो DA बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह चली गई तो ये हमारा वादा है ये पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
4: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले, इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया है। तो चुनौती तो बहुत सारे है, और एक दिन में तो नहीं होगा ये, तो कोई एक महीना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार। और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है
1: जी।
4: पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
0: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
0: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाले थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए, उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई यही नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिए, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई ब्रजा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसपे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए, आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
2: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए. तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही. तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है.
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
0: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं. एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी. आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है. पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोना बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये.
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और के अघोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: धन्यवाद.
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
5: सुर्खियों में
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश. आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का. शोले फिल्म से सुनिए ये गीत राहुल देव.
7: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 8:15 हुए हैं फिल्म संगीत का सफर. आइए शुरू करते हैं.

कश्मीर की कली, इस फिल्म से ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आपने सुना। बोल थे एस एच बिहारी के और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये गीत आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी के बोल, जिन्हें आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। इसके पहले हमने जो गीत आप तक पहुंचाया था, आपको बता दें उस गीत को हमने लिया था फिल्म आरजू से। हसरत जयपुरी के बोल थे, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ थी और शंकर जयकिशन का ही संगीत उस गीत में आपने सुना।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगम का ये गीत आपने सुना, जिसमें संगीत शंकर जयकिशन का था, हसरत जयपुरी के बोल थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आपने इस गीत में सुनी। ये सफ़र जारी है, बने रहिए हमारे साथ।

अमानत इस फिल्म का वो गीत आपने सुना जिसे रवि ने अपने संगीत से सजाया, बोल साहिर के, जिन्हें आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। और अब फिल्म मेरी सनम का वो गीत जिसकी धुन बनाई ओपी नैयर ने, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को आवाज़ दी एक बार फिर रफ़ी ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहाँ पूरा होता है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की

0: शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ा

0: बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाते हैं मिशन कश्मीर। इस फिल्म से वो गीत जिसका संगीत तैयार किया शंकर एहसान लॉय ने, राहत इंदौरी के बोल हैं। आवाजें शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की।

तौबा तुम्हारी ये इशारे, जतिन ललित के संगीत से सजे ये बोल जावेद अख्तर ने लिखे और अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ों ने इस गीत को सजाया। फिल्म का नाम था चलते चलते, और चलते चलते फिल्म संगीत का ये सफ़र यहाँ पूरा हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

AIR ऐप के जरिए भी। रात्रि के इस समय 10 बजने को हैं और समय है शास्त्रीय संगीत का। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। अब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश खिदमत है मन भावन, फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस गुलदस्ते में सजा रही हूँ आपकी फरमाइशी गीत। मैं सारिका नायक, आप सभी को हमारा नमस्कार। पहले मन भाते गीत की फरमाइश पूरी करते हैं उन श्रोताओं की जिन्होंने हमें खत भेजा है। मगर लोड छत्तीसगढ़ से पुनूराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री, राजवीर साहू, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हमारे फरमाइशकर्ता कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुज्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। आप सभी के मन भाया है ये गीत।

तो ये था हमारे कार्यक्रम का पहला मनभाता गीत, जिसे सुनना चाहा था हमारे श्रोताओं ने, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। और लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में शैलेंद्र के ये बोल संगीत से सजाए थे शंकर जयकिशन ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का हमें ये फरमाइशी ख़त मिला है। मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, इन्होंने हमें अपना ये फरमाइशी ख़त भेजा है। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने और अर्जुन गवनेकर, इनके साथ ही धीरज सवासेरे का नाम भी लिखा हुआ है ख़त में। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओ, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा से लक्ष्मण रेकवार, हल्ले विनीता रेकवार, लल्लू ऋषि रेकवार, वैशाली वैष्णवी, इन सभी का फरमाइशी ख़त हमें मिला है। विनोद मूड़त, नेहा जैन, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, इन सभी का ख़त हमें मिला है। और आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें, बसंत बहार फिल्म का गीत आपने इनकी फरमाइश से पहले सुना है, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया ये गीत और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा वो गीत आपने सुना है, और अब इन तक भेज रहे हैं इनकी फरमाइश। फिर हम बताएंगे किस फिल्म से है।

अखियाँ भूल गई हैं सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना। गीता रॉय और लता और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, गूंज उठी शहनाई फिल्म से, बोल भरत व्यास के वसंत देसाई का संगीत। और अपने श्रोताओं तक हमने उनकी ये मनभाती पसंद फरमाइश पहुंचाई भी। मनभावन में अब हम सुनवा रहे हैं अपने उन श्रोताओं को उनकी पसंद का, उनकी फरमाइश का गीत जिन्होंने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे, इंदिरा बिहार रायगढ़ से, वसीम अक्रम नूरजहाँ, डब्लू अक्रम नूरजहाँ, वली अक्रम नूरजहाँ, उल्ला अक्रम नूरजहाँ, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, जेल रोड रायगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। महाराजा रेडियो श्रोता संघ से ज़िला खंडवा के ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, इन सभी ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है। संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने घंटा घर चौक खंडवा से। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म तीसरी कसम का वो गीत जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। आशा भोसले की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं।

आप सुन रहे हैं मन भावन मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से और आपके स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के फरमाइशी खत हाथ में लेते हैं। ध्रुवास सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी सोनवड़े, प्रियांश सोनवड़े, आशीष सोनवड़े, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनवड़े। वे मित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, मंजरी शुक्ला, बिलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, इंदर पटेल, नीलेश पटेल, भैया ठाकुर, गोलू सोनी, लल्लन बर्मन और इनके सभी ग्रामवासी। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, श्रीमती

सरिता गवहांडकर, प्रिंस एकांश गवहांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहांडकर, प्रणीता गवहांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहांडकर, श्वेता सुमित गवहांडकर, कुमारी ध्वनि गवहांडकर और इनके परिवार के सभी सदस्य, शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, संदीप कुमार खंडाले, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार खंडाले और जयश्री खंडाले, इन्होंने प्रणाम सिटी खंडवा से अपना ये फरमाइशी खत हम तक भेजा है। कुछ और श्रोता हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ से हमारे ये सभी श्रोता हैं। बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे, शिवम, शुभांग और सृष्टि गद्रे, इन्होंने भी अपना फरमाइशी खत हम तक पहुँचाया है। तो आइए सुनते हैं इनकी ये फरमाइश।

नौशाद की बनाई धुन और उस पर लता मंगेशकर की ये मिश्री खोलती आवाज़ आपने सुनी फिल्म मदर इंडिया के इस फरमाइशी फिल्मी गीत में। और इसी मनभाती गीत के साथ मनभावन संपन्न करने की दीजिए अब सारिका नायक को अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. C Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal.